अनुजाय नमः। ॐ शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवीरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: ओहो, आज त धारामा कति धेरै धमिलो पानी आएछ है।
2: अब वर्षा लाग्न थाल्यो, यस्तो पानीले त झाडा पखाला, आउ, हैजा, टाइफाइड जस्ता